हम ना इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं, मतलब इस स्ट्रेस के लिए, जो आप स्ट्रेस लेते हैं इसके लिए आपको कोई नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, या जिन लोगों के लिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपको कोई अवार्ड देने वाले हैं? यू नो, जिन लोगों के लिए आप स्ट्रेस लेते हैं उनमें से ज्यादातर लोग तो आपको देखते तक नहीं है उस स्ट्रेस में भाई, मतलब उन्हें रियलाइज तक नहीं है कि भाई ये मेरी वजह से परेशान है या मेरी वजह से स्ट्रेस ले रही है या ले रहा है या इस पे वर्डन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो इस चीज को समझते भी नहीं है। तो देखिए, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, आपसे कोई आके पूछने नहीं वाला, इसलिए थोड़ा सा इस स्ट्रेस के लेवल को कम कीजिए और अपनी जिंदगी में जो बेहतरीन टाइम है, जो सुकून वाला वक्त है, उसे ऐड कीजिए। आप जैसे भी कर सकते हैं, आपको अपनी हॉबी पे काम करना है, आपको एक बढ़िया सी कॉफी के साथ उस टाइम को स्पेंड करना है, या फिर लेट गो कर देना है। यार होता है ना, एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग हम हिंदी में बोलते हैं, भाड़ में जाओ। हाँ, तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस मेरा बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे मेस लगती हैं या मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाड़ में जाओ यार, अब थोड़ी देर बैठने दो शांति से। यू नो, यस ऑफ कोर्स, कभी कभी बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा होता है, बहुत काम मेरा फैला है ना, ऑफिस का बहुत सारा बर्डन हो गया, भाड़ में जाओ यार थोड़ी देर बैठने दो। तो हाँ, ये जो है ये बहुत जरूरी है खुद के लिए वक्त निकालना। और ये छोटे छोटे से वर्ड्स है ना, हर किसी के अपने होते हैं, आपके भी कोई ना कोई जरूर होगा जो स्ट्रेस में बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से सेंटेंसेस, छोटे से वर्ड है, इनमें भी एक अजीब सा सुकून है भाई। तो उसी सुकून के नाम, उसी सुकून भरे पल के नाम ये अगला ट्रैक है। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

दिन प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं है, और ये बात मैंने हाल ही में सीखी। हर दिन कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं होता है। बहुत सारा वक्त रूटीन में निकल जाता है दिन भर के, और कभी कभी कुछ ना करना भी, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारना भी बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े कामों को रोज लेकर बैठ जाएं दिखाने के लिए कि भाई आज तो करना है। नहीं, कभी कभी वेल्ले रहना, कभी कभी खाली रहना भी खुद को सुकून देना होता है। हम हर दिन कुछ अचीव करने, कुछ पाने, आगे बढ़ने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का या भागने का नाम तो नहीं है। कुछ दिन तो जीने के लिए भी होने चाहिए ना, और यही लाइफ का बैलेंस है। और इसी बैलेंस के नाम एक और ट्रैक तो बनता है। आइए सुनते हैं मिलकर, हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्फानी 1701 एम। Just beat the beat, beat, beat.

अच्छा, कभी सोचा है आपने, हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए बड़े बड़े लम्हों का इंतजार करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारी जिंदगी की खुशियां, हमारी हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में बसी हुई है, बहुत छोटी चीजों में मिलती है वो हमें। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे मुताबिक होगा, हमारी पसंद के मुताबिक होगा, तब खुश होंगे, जब हालात बेहतर होंगे तब खुश होंगे, या तब खुशी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पल ही तो हैं जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, और इसीलिए अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी खुशी का इंतजार मत कीजिए, किसी बेहतर पल का इंतजार मत कीजिए, उसको जीने का, उसको सेलिब्रेट करने का जब मौका मिले उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको इंजॉय कीजिए और अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एफएम पर।

जिंदगी में आपके सुकून, आपकी खुशियाँ तब लौट कर आती हैं जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। एक एज तक आप ये सोचते हैं एक्चुअली, लेकिन एक एज के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ, आपकी जिंदगी में सुकून लोगों के सोचने से नहीं आता, उनकी सोच से नहीं आता, और इसलिए आपको उनके बारे में सोचना अब बंद करना पड़ेगा। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा तो आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, है ना। होता है ना ये कि मतलब अगला हमारे बारे में सोच रहा है कि नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो शायद उसको पता है, हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सो जब तक आप अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, या आप दुनिया के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे, आप ना तो खुद को संभाल पाएंगे और ना ही अपने परिवार का सुकून बरकरार रख पाएंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें इस बात से होती है कि लोग क्या कहेंगे, और इस डर से हम बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं लाइफ में वो नहीं करते। हम बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, हम नहीं ले पाते क्योंकि हमें सोसाइटी का, लोगों का बहुत डर है। तो भाई लोग आपकी जिंदगी, आपके हिस्से की जिंदगी जीने नहीं आ रहे हैं, वो जिंदगी आपकी है और आपके लिए लिखी गई है। आपको बस अपने कर्मास को बढ़िया रखना है और बाकी लोग क्या कहेंगे ये लोगों पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, आपकी नजर में आप सही होने चाहिए बस। क्योंकि जो खुद की नजर में गलत होता है ना, फिर वो दुनिया की नजर में भी सही हो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो दुनिया की नजर में चाहे लाख गलत हो लेकिन ऊपर वाले की नजर में और खुद की नजर में अगर वो सही है तो फिर सब बढ़िया है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: முழவு நடிகள் முழவு
1: कुछ लोग ना हमारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि वो हमारी बहुत परवाह करते हैं और हम भी उन्हें अपना समझकर उनके सामने अपना दिल खोल देते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, बताते हैं। फिर पता चलता है कि जो बातें हमने उनको अपना समझ के बताई थी, उन बातों का उन लोगों ने मजाक बना दिया, उन बातों को उन्होंने औरों के साथ कह दिया। दिल टूटता है, लेकिन साथ ही जिंदगी का ये लेसन भी मिलता है कि भाई साहब, जो आपके अपने बन रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने हैं, जो जैसा दिखा रहा है जरूरी नहीं है कि वो वैसा है। इसलिए कहते हैं ना कि लोगों पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करिए, ये एक कलयुग है, हर मोड़ पर अर्जुन को माधव मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आपको सजेशंस देने वालों में आधे वो लोग होते हैं जिनका उसमें अपना स्वार्थ होता है, या आधे वो लोग होते हैं जो उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, उनके अपने फेलियर्स हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस को आप पर थोपते हैं। सो बहुत सोच समझ के लाइफ में किसी पर भरोसा करिए, बहुत सोच समझ के किसी के सजेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर सामने वाला फेल हो गया या सामने वाले के साथ वो हुआ जो वो कह रहा है, वो आपके साथ भी होगा, है ना। और अपने दिल को हर किसी के सामने मत खोला करिए भाई, ये जमाना वो नहीं है जो हर किसी के साथ अपनी बात कह दी जाए, बहुत सोच समझ के, बहुत विश्वास के साथ, है ना। तो चलिए, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ, तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस हो गया वो समझदार है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए छापन्स रेडियो ब्रिस्फानी 1701 एम पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और प्यारा सा, सुंदर सा, क्यूट सा साथ, और इस साथ को मैंने आपके साथ निभाया एंड आई होप कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। हाँ भाई, मॉर्निंग क्या, देखिए स्टार्ट अगर बढ़िया सा हो जाए, शानदार हो जाए, तो फिर पूरा दिन अच्छा गुजरता है ना। सो आज का दिन आपका बेहतरीन हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, इसी विश के साथ लेती हूँ आज के इस प्रोग्राम इट हैपेंस से अब विदा। मस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्री अकाल जी हां तुसी बने होए हो छु थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बन चुकी हो ढेर सारी गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला शुरू हो चुके है जी ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां करनियां ही करनियां ने नालों नाल ढेर सारे गीत वी सुनने ने तुसी ही बस जुड़ते रहो साडे नाल रेडियो बसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिया जिहड़ा तुहानू चंगा लगदा है ना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਗੀਤ।

हां जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 ते चाचे संदेश चौलक दे नाल तुसीं पाणे होए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नूं नवा लुक देण दे लई वेट लूज कीता, पर जरूरत तो ज्यादा पतला हो जाण दी वजह नाल कईआं नूं तां तारीफां तो ज्यादा ना ट्रोलिंग दा सामना करना पिया सी। उन्हां बारे ही मैं सोचा कि क्यों ना गल करा, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा क्रेज वध चुकिया है लोगों के पतले होने का। हर कोई चाहता है कि मैं पतला होवां, बहुत पतला होवां। बहुत पतला होने के चक्कर कई कई स्केलेटन हो जाते हैं, कई वधिया लगते हैं, पर कई मतलब ट्रोलिंग का शिकार होना पैंदा है। तो मैं अज उन्हां ही एक्टर्स बारे दसूंगी जो ज्यादा पतले हो गए थे, उन्होंने ट्रोल किया गया उन्होंने पतली लुक करके।

0: लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे

सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी, उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा है, ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदो अलायंस विच आए ना शो दे विच, तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुक गए, तो कंपेरिजन वीडियोज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से छा गए कि पहला की सी ते हुण की बन गए हैगे ने। तो उस तो बाद उन्हां नूं काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, जिवें तुहानूं पहला दस्सिया सी ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैगे ने, तो उसी तरह दे नाल सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं हैगे जिन्हां ने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्हां ने चली हैगी है, बहुत सारे हैगे ने। उन्हां बारे दस्सदे आं तुहानूं एक एक करके, पहला सुनो एक गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: Excuse me, sir.
3: Sir,
4: problem
5: is.
4: Kya? Model nahi aa raha.
5: Kyun?
4: आपकी मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी.
5: ला फोन दे.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम से जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम हैगा वह है राम कपूर का। टीवी की दुनिया विच कामयाबी के झंडे गड्ढण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मों विच भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखने लग पाया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी।
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी
7: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Some number carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
10: Mera naam Dr. Kumar hai, aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आलस पने हुए। अगला नाम है जी करण जौहर दा। बॉलीवुड दी दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दितिया बल्कि हिंदी सिनेमा नू कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नू असी शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स ते मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैन का आरोप लग गया। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

हां जी रेगवो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते चार्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नू वी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह है कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजेक्शन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मा दे लई घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर जद वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस दे लई ट्रोलिंग चल चुके आ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: मिक्सिंग इन द हाउस शिकार नहीं होना चाहिए उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वधिया सी ते केड़ी एक्ट्रेस तुहानू लगता है कि उसनू स्लिम होने की लोड़ नहीं बल्कि ही ज्यादा वधिया लगती सी जरूर दसो जुड़ते रहो साडे नाल ते मैं तां इही वादा करके चली आं जी कि कल करदे मुलाकात रुख अपना ख्याल सत श्री अकाल
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash your boy.
3: Yeah.
2: Tomorrow night.

0: अरे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वृद्धबेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलन। ए विलन।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: मोहब्बत का हुनर ये है

अगर इश्क हल्का कर दे तो वही सही इश्क है, जो बोझ बन जाए सीने पर वो बस आदत की रेख है।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
2: ब्रिस्बेन। क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली LG बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनवीर फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 04886234599 या बीरेंद्र सिंह ऑन 04093905833 या फिर बाबा ऑन 04137016 51।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। एंड फील कर रहे हो आप सब, मंडे का दिन है, मंडे जैसी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है जरूर मुझे बताइएगा। और हम यहाँ पर आ गए हैं आपको सुकून पहुंचाने, आपको एंटरटेन करने, आपको नए नए आइडियाज देने और क्या आप एंटरटेनमेंट फील्ड में देख सकते हो वो सब बताने। सो बेसिकली प्रोग्राम में बहुत कुछ होता है और आपकी फरमाइशें भी होती है क्योंकि ये

आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास चीज के साथ और वो है हेल्दी रिचुअल। जी हाँ, और जो हेल्दी रिचुअल है वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि वो हमें काम रखता है, फोकस्ड रखता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली हेल्दी रखता है। सो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ, और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है मुख्तसर, और वो है शाहिद कपूर का गाना। और शाहिद कपूर का ये गाना जो है उनकी काफ़ी अच्छी मूवी में से एक है, और सिर्फ शाहिद कपूर की नहीं बल्कि ये प्रियंका चोपड़ा की भी मूवी है, एंड इट वॉज द टाइम वेन दे वर डेटिंग। जी हाँ, बट ऑफकोर्स इस मूवी के वो भी हुए बहुत वक्त आए हो गया है, और यहाँ पर ये दोनों स्टार्स भी अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्तसर से और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो जरा हम बात कर लेते हैं मौसम की। टेम्परेचर क्या कह रहा है, मौसम क्या कह रहा है। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। जी हाँ, आपको हो रहा है 23.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, दिन की बात हो गई तो रात की बात करते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। 50% यानी कि 50% चांसेस यहाँ बारिश के भी हैं। जी हाँ, जो कि अगेन कुछ इलाकों में है, कुछ में नहीं है। और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। वहीं अगर कल एंड साथ में वेडनेसडे की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं। 40% चांसेस बारिश के भी हैं कल यानी ट्यूसडे के लिए। और अगर बात की जाए वेडनेसडे की तो 70% चांसेस है बारिश होने के विद 26 डिग्री। आप तापमान देखेंगे उसके बाद आपको फिर से दो दिन के लिए गिरावट जो है वो नजर आने वाली है। और दो नहीं बल्कि संडे तक आप देखेंगे कि तापमान में गिरावट है, फिर उसके बाद फिर से तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपने देखा बीच में तापमान जो है वो कितना बढ़ गया था एकदम से, एंड फिर उसके बाद आपको निजात मिल गया। फिर से जो है खूबसूरत हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो गई। और अगर आप लोग समर पीपल हो और आप समर्स का इंतजार कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा और वक्त की इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरी तरह समर जो है वो आने वाला है और फिर आपको वो सारी सारी अच्छी चीजें करने को मिलेंगी। सबसे अच्छी चीज समर्स की क्या है? ऑफ कोर्स मैंगोज। और दूसरी चीज कि मतलब आप कहीं भी जा सकते हो थोड़ी बहुत पैकिंग करके। यू डोंट हैव टू पैक मच। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको इतनी पैकिंग करने की जरूरत नहीं होगी, आप मजे से थोड़े से कपड़े लेके जा सकते हो। यू नो व्हाट, दैट इज सो गुड। कितनी अच्छी बात होती है कहीं जाना हो और बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ जाए, आधा लेजीनेस तो उसी चक्कर में आ जाती है। तो समर्स कैन बी रियली गुड बिकॉज यू डोंट हैव टू पैक मच। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 701 AM शो चल रहा है मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं आपकी क्योंकि इवनिंग वाइब आ गया है, क्योंकि मंडे आ गया है और मंडे टू फ्राइडे होता है इवनिंग वाइब, मतलब आपकी फरमाइशें, आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स हमारे इस प्रोग्राम में प्ले होंगे ही होंगे। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, आपकी फरमाइशों का साथ भी हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो हो रही हैं या फिर अभी कुछ वक्त पहले हुई हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सैम ऑल्टमैन के बारे में। जी हाँ, सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने एक नई जो है वो स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट इतनी ज्यादा फनी है कि मैं क्या कहूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह पर जाकर मैं हंसूं, बट ऑफ कोर्स आई कांट डू इट। और उन्होंने कहा क्या है, आइए जरा मैं आपको वो बताती हूँ। सो सैम ऑल्टमैन सेज 38,000 चैट जीपीटी क्वेरीज यूज एज मच वाटर एज वन ऑलमंड। या आपने सही सुना, अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। सो सैम ऑल्टमैन सेज 38,000 चैट जीपीटी क्वेरीज यूज एज मच वाटर एज वन आलमंड। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे एलो जी, उन्हें ए बादाम के पीछे पै गए। या बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बादामों के पीछे पड़ गए हैं। बट ये एग्जैक्टली बादामों के पीछे नहीं पड़े हैं। इनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोगों को ऐसे कहा जा रहा है कुछ वक्त से कि चैट जीपीटी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। एंड इट्स नॉट जस्ट चैट जीपीटी, एवरी AI uses lots and lots of water. जी हाँ, so इंसानों के पास पानी नहीं रहेगा और चैट जीपीटी के पास पानी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये मैंने नहीं कहा है, ये बिल गेट्स ने भी कहा है कि 2027 तक इंसानों के पास पानी की भारी कमी आ सकती है। जी हाँ, अब ऑफकोर्स इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है या कुछ ऐसी बात हो रही है। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स AI. जी हाँ, अब AI जो है वो डेटा सेंटर्स वो यूज करते हैं बहुत सारा पानी। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट द ओशन वाटर। अगर वो ओशन वाटर यूज करते होते तो फिर हमारे पास बहुत था। मतलब हम इतने सारे AI डेटा सेंटर चला देते कि मतलब बात ही क्या थी। दे यूज द फ्रेश वाटर, मतलब उनको अच्छा पानी चाहिए, वो पानी जो हमको पीने के लिए चाहिए। AI भी वही पानी मांगता है। नाउ सैम ऑल्टमैन सेज कि इतना क्या बात हो रही है इसके बारे में कि चैट जीपीटी जो है वो इतना सारा पानी पी जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। 38,000 चैट जीपीटी क्वेरीज जो है वो यूज करती हैं उतना ही पानी जितना कि एक आलमंड यानी कि एक बादाम को उगने के लिए चाहिए और बनने के लिए चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में हल्ला डालना चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज यू नो व्हाट, इट्स जस्ट वन आलमंड। मतलब एक बादाम जितना पानी यूज कर रही है 38,000 क्वेरीज। मिस्टर सैम ऑल्टमैन, बादाम हमें क्या देते हैं वो आपको भी पता है, और आप हमें क्या देते हो वो भी हमको पता है। मतलब हम वी कैन लिटरली सर्वाइव विदाउट AI. We have been doing it for a very long time. मतलब हमारे ancestors कर गए तो हम क्यों नहीं कर सकते। But you, आप ये बोल रहे हो कि नहीं, बादाम अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर बादाम इतना पानी पी सकता है तो हम भी इतना पानी पी सकते हैं। मतलब वो नहीं, उनका AI. So yeah, that's what Sam Altman says. And I don't know what to say to that, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन मुझे हंसने का मन कर रहा था उनके मुंह पर जाके। मतलब ऐसे नहीं, यहाँ पे हंस के बात नहीं चलेगी, उनके मुंह के सामने हंसेंगे और एकदम तंच के साथ हंसेंगे तभी बात बनेगी। बिकॉज दीज मैन, मतलब ये जो लोग हैं ना, दिया मिर्जा भी कुछ वक्त पहले कह रही थी कि यू नो व्हाट, द मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एंड पीपल वर लाइक वो है, एंड बंदे भी ये सोच रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग का ठीकरा भी हमारे सर पे फोड़ दिया। बट यू नो व्हाट, शी इज राइट। उसने ये आगे बोला, दिया मिर्जा ने आगे ये बोला कि कितना केओस फैलाया हुआ है, ये सब के सब बंदे कर रहे हैं। इमेजिन वुमेन लीडिंग अ कंट्री, वुड शी डू इट? ना, I guess, yeah, that's true. So the chaos, the global warming, everything is happening because of men. I'm not saying all the men, but yeah, the men are responsible for it. What do you think about it? Zarur mujhe batayega yahan par ek aur gana aap sab ke liye meri taraf se.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आजकल म्यूजियम्स में नहीं बल्कि इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर मिलती है। कल की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर स्क्रॉल करते करते मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसको देखकर मुझे आपकी याद, मुझे ऐसा लगता है कि अरे संडे कौन सा संडे, जल्दी से मंडे आएगा तो मैं अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर करूंगी। अगर हम इसे मीम की तरह लेंगे तो भी बढ़िया है, लेकिन ये सेंस वाला मीम था सो ऑफकोर्स। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इससे अग्री करेंगे, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एंड मैं सारे ओल्डीज और गोल्डीज से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बचपन में भी ऐसा हुआ है? सो वहां पे लिखा हुआ था कि व्हेन आई वाज अ किड दे डिडंट टेक मी टू अ थेरेपिस्ट। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन आई वाज अ किड दे डिडंट टेक मी टू अ थेरेपिस्ट, माई मॉम इजिली स्टेबलाइज्ड माई कर्मा, ओपन माई चक्रा एंड क्लीन्ड माई ऑरा विद वन सिंगल स्लैप। एंड आई वाज लाइक Yeah, that's true. That's what happened to me and that's what happened to so many, you know, Indians. And the fun fact is कि हमारी मम्मी लोग जो है ना, वो अगर आपको सुधार पाती हैं तो ठीक है, नहीं तो बेलन, चप्पल, झापड़, ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। Well, of course. Because here it is not allowed. But the thing is कि इंडिया में अगर आप कभी रहे हो तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। और बचपन में मतलब थेरेपी वेरेपी की जरूरत नहीं होती थी पहले के जमाने के लोगों को, पहले के जमाने के बच्चों को, उनको मम्मी की मार से ही जो है थेरेपी मिल जाती थी। वो थेरेपी जो है उनके चक्रास को ठीक कर देती थी, उनका कर्मा स्टेबलाइज कर देती थी, उनका ऑरा भी क्लीन कर देती थी, एक झापड़ सब कुछ ठीक कर देता था। थेरेपिस्ट भी फेल हो जाए मम्मी के झापड़ के साथ। आपके साथ भी ऐसा बताएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

किस्से के साथ एक और बड़ा ही फनी किस्सा जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। और वो फनी क्यों है, वेल मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। वेल ये कहानी है इटली की, जहां पर एक पति और पत्नी के बीच में नोकझोंक हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और वो पति उस आर्ग्यूमेंट के बाद अपने आप को कूल डाउन करने, कूल ऑफ करने के लिए एक वॉक पर निकल जाता है। और ये वॉक जो है वो इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि उसकी जो बीवी है वो उसको मिसिंग घोषित कर देती है। जी हाँ, आई डोंट नो क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या चल रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये जो यू नो नोकझोंक या जो भी आर्ग्यूमेंट्स इतने फनी होते हैं। मतलब मियां बीवी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और लोगों को ये पता है कि मियां बीवी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे और जब वो मियां बीवी बनेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पर फिर भी लोगों को मियां बीवी बनना है। जी हाँ, सो ऑफकोर्स जो मिलीनियल्स हैं जो कि शादी नहीं कर रहे हैं और उनको शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनकी समझ के तो ये पक्का बाहर है चीज। नाउ ये जो कहानी है वो इटली की है, जैसे मैंने कहा, एक 48 साल का व्यक्ति जो कि अपने आप को कूल डाउन करने के लिए निकलता है एक आर्ग्यूमेंट के बाद अपनी वाइफ से, वो एक वॉक पर निकलता है और वो इनक्रेडिबल वॉक जो है वो 285 माइल की जर्नी में तब्दील हो जाती है। मतलब वो बंदा चल ही रहा है, मतलब ऐसा क्या कलेश कर दिया, ऐसा क्या उसकी बीवी ने उसको प्रताड़ित कर दिया है कि बंदा मतलब 285 मील तक चलता ही रहा, उसको समझ ही नहीं आया। मतलब चलना ठीक है बट बीवी के पास वापस जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर से ज्यादा कलेश सहा नहीं जाएगा। एंड यू नो व्हाट, दिस इज सो फनी। सो ही स्पेंट अराउंड अ वीक वॉकिंग फ्रॉम नॉर्दर्न सिटी ऑफ कोमो टू फेनो ऑन इटलीज एड्रियाटिक कोस्ट, एवरेजिंग रफली 37 माइल्स अ डे। मतलब 37 माइल्स जो है वो एक दिन के ये चला इंसान, और उसके बाद ये चलता रहा। फिर उसके बाद पुलिस ने इवेंचुअली इसको रोका, मतलब ये खुद वापस नहीं गया। जी हाँ, मतलब 285 यानी कि 285 माइल्स चलने के बाद भी जो है वो ये खुद वापस नहीं गया, खुद नहीं रुका बल्कि इसे पुलिस ने रोका। जी हाँ, और सुबह सुबह का वक्त था जब पुलिस ने इसे रोका और कहा कि अरे बहन, अरे भाई, अरे चाचा, अरे मामा, तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो डाल दी है, अगर तुम गए नहीं तो दूसरा कलेश हो जाएगा और फिर से 285 मील चलना पड़ेगा, इससे पहले तो वापस चले जाओ। जी हाँ, बीवी भी सोच रही होगी अरे यार, मतलब इट वॉज अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, दैट्स हाउ वाइब्स आर सपोज टू बी, लाइक व्हाट। कलेज नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा हाउ कैन यू से दैट, खुद भी तुम लड़की हो। अरे यू नो इट्स ऑल फन एंड गेम्स, जोक मार रही हूँ। बीवियां बहुत अच्छी होती हैं, देखो कुछ गड़बड़ की है तो बंदे नहीं की होगी, बीवी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात है। मैं तो अपनी फीमेल्स के साथ ही हूँ क्योंकि मैं खुद भी फीमेल हूँ यार, मैं अपनी फीमेल लिसनर्स के साथ हूँ। लेडीज जो है वो कभी भी कलेश नहीं करती है, कलेश करवाते हैं मर्द लोग। जी हाँ, दैट इज द ट्रूथ। आई एम नॉट मैरिड बट आई नो द ट्रूथ। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। अगली बार आप भी कोई आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा अपने हस्बैंड्स के साथ, क्योंकि आजकल 285 मील चलने का रिवाज शुरू हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: rich experience. Take conveyance, family law, immigration laws, which we Bhardwaj and Associates, the lawyers, the vast experience are. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
2: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. Commercial matter ho, jaise lease ka mamla, business ho, ya phir gharon ki buying selling ka mamla. और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
3: अरे वाह, इनका पता बताना.
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब जन्मदिन की मुबारकबाद देने का वक्त हो गया है. यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त अभिनेत्री को और इनकी एक्टिंग का लोहा तो बड़े बड़े एक्टर मानते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राधिका आप्टे. जी हाँ, सो अगर आप नेटफ्लिक्स की सीरीज के फैन हैं, मूवीज के फैन हैं और बहुत सारी ऐसी क्रूशल और हार्ड हिटिंग मूवीज के फैन हैं, तो आपको राधिका आप्टे की एक्टिंग के बारे में पता होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी फेवरेट भी होंगी. आज उन्हीं का जन्मदिन है और उन्हें प्रिंसेस भी कहा जाता है नेटफ्लिक्स की, क्योंकि हर दूसरी सीरीज में आपको वो देखने को मिल जाती है. जी हाँ, सो राधिका आप्टे का जन्मदिन है आज. सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद इन्हें हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से. हम यही कहेंगे कि ऐसे ही अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते रहिए, क्योंकि वो आपके फैंस हमेशा हमेशा मिस करते हैं. सो ऑफकोर्स जल्दी से वापसी कीजिए और यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, आरसी के साथ हम जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, सबसे पहले उसी से अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अमेरिका में मियामी एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, सबसे पहले एक खबर जो कि बहुत ही बुरी है और ये अमेरिका से आई है। अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को एक कार्गो विमान रनवे से बाहर निकलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम 5 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं। अमेज़न एयर का ये कार्गो विमान स्थानीय समय के मुताबिक करीब दोपहर 2 बजे उतरने के बाद रनवे से आगे निकल गया और क्रैश हो गया। विमान करीब 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे से बाहर चला गया। बोइंग 767-300 विमान ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे की शुरुआती सूचना मिलने के बाद करीब 200 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के मुताबिक घायलों में से 3 को स्थानीय ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि 2 अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: सासों की माला पे सिमरूं मैं.
14: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
15: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
14: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
16: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
16: बिल्कुल. ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omzorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं उस ज्वालामुखी के बारे में जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंस गए हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 1.5 लाख से भी अधिक यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से यहाँ के 8 हवाई अड्डों पर करीब 1,70,000 यात्री फंसे हुए हैं। इन हवाई अड्डों से फिलहाल उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। रविवार सुबह जकार्ता से सोयकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे पहले बंद किया गया। हवाई अड्डे के पास एयर स्पेस में अन्नाक क्राकटोवा ज्वालामुखी की राख पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 1,558 उड़ानें देरी से चल रही हैं। हवाई अड्डे स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ था। इसके बाद आसपास के इलाकों में लगातार भूकंप जैसे हालात बनने लगे। लावा के फवारे और जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। रविवार तड़के 2 और विस्फोट हुए। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि उड़ानों का संचालन रुकने से मुख्य रूप से सिंगापुर आने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा दोहा, सिडनी और कुआलालंपुर समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की उड़ानें भी यहां पर प्रभावित होती हुई नजर आई हैं।

जी दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की दुनिया में और कुछ भी चल रहा है। वेल, जर्मनी से खबर आई है कि जर्मनी में धुर दक्षिण पंथी पार्टी AfD राज्य में बड़ी जीत की ओर बढ़ी है। जी हाँ, सो जर्मनी में धुर दक्षिण पंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी

ज्यादातर शुरुआती नतीजों में ये वो कंजर्वेटिव सीडीयू से काफी आगे हैं, जिसे करीब 17 इसे सनसनीखेज जीत बताया है और कहा कि पार्टी जल्द से जल्द सरकार चलाना शुरू करना चाहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी में किसी भी धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने किसी राज्य की सत्ता नहीं संभाली है। राज्य स्तर पर सरकार बनाने का मतलब पुलिस व्यवस्था, स्थानीय शिक्षा और संस्कृति जैसे मामलों में अधिकार मिलना होगा, जो कि एक बहुत बहुत बहुत ही बड़ी बात है। जी, इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ स्वागत है आप सबका ट्रंप रोस्टिंग सेशन में। अब जी हाँ, आप लोगों को पता चली गया होगा कि हम मिस्टर ट्रंप की खिल्ली उड़ाने वाले हैं, तो आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं। इफ यू थिंक कुछ चीज आपको पता है जो ट्रंप के बारे में बहुत फनी है, तो या सेंड इट टू अस बिकॉज वी लव दैट। नो, वी डोंट लव ट्रंप बट वी लव रोस्टिंग ट्रंप। जी हाँ, तो थिंग्स आर एस्केलेटिंग बिटवीन कैनेडा एंड अमेरिका। मतलब पहले लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका कह दिया और एप्पल से लेके गूगल तक सबको कह दिया कि मैप में अब तुमको लेक ओंटारियो नहीं दिखानी है, बल्कि वो दिखानी है लेक अमेरिका। इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी थी, लेकिन अब ट्रंप को प्रॉब्लम हो गई है कैनेडियन डॉलर से। मतलब उसको जो कैनेडियन डॉलर बिल है, मतलब जो नोट है, जो करेंसी है, वो पसंद नहीं आ रहा। और उनको ये भी नहीं पसंद आ रहा कि वो 101 क्यों नहीं है। और यहां पर अब वो लगता है कि ट्रंप जो है वो लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका के बनाने के बाद जो है वो करेंसी भी चेंज करना चाहते हैं कैनेडा की। अब कैनेडियन लोगों से पूछा जाए इसके बारे में तो वो बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारा डॉलर बहुत पसंद है। अरे हाँ, तुम्हारा डॉलर जो है वो बहुत अगली है। जी हाँ, ये कैनेडियन लोग अमेरिकन लोगों को बोलेंगे। अच्छा चलो, ये सब तो चल ही रहा था क्योंकि ट्रंप बीइंग ट्रंप और कोई काम तो है नहीं। मतलब अच्छे काम तो करने नहीं है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा ये इंसान, जो नहीं कर रहा करना चाहिए वो कर रहा है। इसके बाद पता नहीं दिमाग में क्या आया और एक पोस्ट डाल दी ट्रुथ सोशल पर, जहां पर लिखा हुआ है द मून इज आर्स और आगे अमेरिका का झंडा बना दिया। आप लोग बोलोगे क्या, लाइक ट्रंप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब चांद उनका है। वेल, चांद तो अभी तक शायरों का था, लेकिन अब चांद जो है वो ट्रंप का है। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। और ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं, वेल हमें नहीं पता। और उसी के साथ उन्होंने नई यूनिफॉर्म जो है वो भी दिखाई, एक नया सूट जो कि लिटरली स्टार वॉर्स की इंपीरियल मिलिट्री यूनिफॉर्म की तरह दिख रही है। मतलब ये बंदा ना हर जगह जो है वो एआई का इस्तेमाल करेगा हर जगह, क्योंकि अब रियल में कुछ हो नहीं पा रहा है। और मून लैंडिंग तो अमेरिकन से हो ही नहीं पाई है आज दिन तक, ये तो बहुत सारे लोग कहते ही हैं, बट ठीक है क्योंकि ये चीज जो है वो पॉसिबल है। भाई मून आपका है या नहीं है ये नहीं मुझे पता, लेकिन चाइना का जरूर हो जाएगा कुछ वक्त में, क्योंकि जिस हिसाब से मिशंस चल रहे हैं चाइना के, चाइना बहुत बड़ा स्पेस जो है वो लेने वाला है मून पर। आप लोग बोलोगे कि हाँ चाइना का तो फिर भी समझ आता है क्योंकि दे आर लिटरली वर्किंग ऑन इट। मतलब उन्होंने चावल उगा दिया यार, मतलब चावल को उगा दिया उन्होंने स्पेस में, वो क्या नहीं कर सकते हैं यार। दैट्स ट्रू बट अमेरिका वालों से रियल में तो हो नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एआई से ही कर देते हैं। और मिस्टर ट्रंप बींग ट्रंप की अरे ये सब यहां वहां लगे हुए हैं, पहले ऐसा करता हूं, सबसे पहले कनाडा को छोड़ो, इधर छोड़ो उधर छोड़ो सब जगह छोड़ो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी छोड़ो, ऐसा करता हूं पहले मून पे कब्जा कर लेता हूं, बाकी जगह बाद में देखूंगा, क्योंकि अगर किसी ने मून पे कब्जा कर लिया तो मेरा क्या होगा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे रहूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट। इट्स नॉट ग्रेट, इट्स पोटेट। या मिस्टर ट्रंप, इट्स पोटेट। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.
4: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों मतलब मैं कहती हूँ ना, सोशल मीडिया हमें रियल में जीना सिखा रहा है। मतलब हम लोग गलत तरीके से जीते आ रहे थे, हम लोग इस मैट्रिक्स में फंसे हुए थे कि हमको सबको खुश करना है, हमको जो है वो सबकी आओ भगत करनी है, कोई हमको अच्छा फील नहीं भी करा रहा तो भी हमें अच्छा बन के रहना है। लेकिन आजकल हमें सोशल मीडिया ये कहता है, अरे नहीं नहीं कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया अच्छों को और मारती है। जी हाँ, सो यहाँ पर कल की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर लिखा हुआ था कि यू डोंट हैव टू बी एवरीवन्स सनशाइन। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, यू डोंट हैव टू बी एवरीवन्स सनशाइन, बी अ कैक्टस, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टे हाइड्रेटेड एंड पोक पीपल व्हेन दे गेट टू क्लोज। एंड आई वाज लाइक या आई मीन सारी अच्छी गिरी एक तरफ, लेकिन फ्री विल का भी तो अपना ही मजा है, राइट? इफ वी कैन, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन देयर आर मेनी पीपल जो हमारी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ही है। जी हाँ, यू डोंट हैव टू बी एवरीवन्स सनशाइन। जी हाँ, ये सारा जिम्मा अपने ऊपर और अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। बी ए कैक्टस, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टे हाइड्रेटेड एंड पोक पीपल व्हेन दे गेट टू क्लोज। जी हाँ, जब वो गड़बड़ करें तो उनको पोक करो, जस्ट लाइक कैक्टस। यू डोंट हैव टू बी सनशाइन ऑल द टाइम। या इट्स पेशेंस को टेस्ट करते हैं तो उनके लिए ही है। जी हाँ, यू डोंट हैव टू बी एवरीवन्स सनशाइन। जी हाँ, ये सारा जिम्मा अपने ऊपर और अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। बी ए कैक्टस, माइंड योर ओन बिजनेस, स्टे हाइड्रेटेड एंड पोक पीपल व्हेन दे गेट टू क्लोज। जी हाँ, जब वो गड़बड़ करें तो उनको पोक करो, जस्ट लाइक कैक्टस। यू डोंट हैव टू बी सनशाइन ऑल द टाइम। या इट्स ओके टू बी अ कैक्टस।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब हमारे फेवरेट और सबसे खास सेगमेंट में एंट्री मारने का वक्त हो गया है। और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते नहीं हो, क्योंकि अगर आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो फिर तो आपको पता ही होगा कि घड़ी ने जो इशारा कर दिया, मतलब जो वक्त हो गया है घड़ी में, वो यही कह रहा है कि सेगमेंट वो शुरू होने वाला है जिसमें हम सीधा जो है वो टेलीपोर्ट करने वाले हैं, सीधा जो है टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, उस एरा में पहुंचने वाले हैं जिस एरा में थे किशोर दा, जिस एरा में थे रफी साहब, जिस एरा में थे दिलीप साहब, यूसुफ साहब, और साथ में पृथ्वीराज चौहान। उनकी गजब की अदाकारी, उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी गायकी, जब खय्यम जैसे म्यूजिक कंपोजर्स होते थे, जब नीलेश जैसे बहुत ही जबरदस्त लिरिसिस्ट हुआ करते थे, जी हाँ उसी एरा में हम जाने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आ जाइए। और अगर आपका कोई फरमाइशी गीत है जो कि है पुराना और आप करना चाहते हैं वो फरमाइश और बनाना चाहते हैं कोई फसाना, तो जल्दी से आ जाइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ खूबसूरत सा हमारे इस सेगमेंट में, सबसे पहले वो मेरे दिमाग में पूरा का पूरा वीकेंड चल रहा था। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वेल उस गाने का नाम है एक लड़की भीगी भागी से, आई डोंट नो, आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई वाज लाइक वाओ वाओ, मतलब मधुबाला एंड किशोरदा। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि जो किशोरदा को मोहब्बत हुई थी मधुबाला से, वो इसी सेट पे हुई थी, और इनका जो रिश्ते की शुरुआत हुई थी वो पनपा था, वो यहीं से हुआ था। सो ऑफकोर्स दिस मूवी इज वेरी स्पेशल फॉर देम, एंड ऑफकोर्स दिस, मतलब क्या खूबसूरत सा गाना है, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

0: आगे से सोती रातों में जागे से मिली एक अजनबी से।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्चे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं राजकुमार के बारे में। जी हाँ, और आपको तो पता ही है कि 60 के दशक के बहुत ही जबरदस्त कलाकार जो है वो राजकुमार हुए हैं। अब ये वही वक्त था जब देवानंद साहब बहुत ज्यादा चर्चित हुए, जब ये एरा थी दिलीप साहब की, देवानंद साहब की, राज कपूर की। जी हाँ, लेकिन राजकुमार भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे। लेकिन आपको पता है डिफरेंस क्या था राजकुमार और बाकी सारे अच्छे एक्टर्स के बीच उस टाइम? क्योंकि राजकुमार जो है वो भी अपने स्वैग के लिए जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब वो एक्टिंग करते थे तो लोग जो है उनके स्वैग के लिए ही थिएटर्स में पहुंच जाया करते थे और कतारों में टिकट्स लेने के लिए खड़े हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजकुमार जो है वो अपने स्वैग के साथ अपनी एरोगेंस के लिए भी जाने जाते हैं, और इसके बारे में हमने आपको काफी किस्से सुनाए। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही फनी है। एक्चुअली ये दो किस्से हैं। सबसे पहले तो राजकुमार ने एक बार एक फिल्म के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि जो उनको नरेट करने के लिए डायरेक्टर आए थे उन्हें उस डायरेक्टर की शक्ल ही पसंद नहीं आई। जी हाँ, मतलब उन्होंने सीधा सीधा उस डायरेक्टर को मना कर दिया कि मुझे तुम अच्छे ही नहीं लग रहे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। स्टोरी बाद की बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही। आप लोग बोलोगे कि क्या खतरनाक रेसिज्म है, मतलब इट्स नॉट इवन ईगो, इट्स अ अफ्रंट रेसिज्म, या यू कैन से दैट। अच्छा, एक और बहुत ही फनी चीज है, और फनी के साथ ये चीज जो है वो घमंड को भी दिखाती थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि क्या बात है, स्वैग हो तो ऐसा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि इतना भी किस चीज का घमंड। जी हाँ, आप अच्छे एक्टर थे वो बहुत सारे लोग मानते थे, लेकिन आप किसी और को इतना बुरा और नीचा कैसे फील करवा सकते हो? तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक बार डायरेक्टर को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें उसकी शक्ल पसंद नहीं आई थी, एक और डायरेक्टर के साथ जो उन्हें स्टोरी नरेट करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने उसके साथ और भी ज्यादा खतरनाक काम कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर को स्टोरी अपने कुत्ते को नरेट करने के लिए कहा। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब राजकुमार ने कहा कि ऐसा करो, जो कहानी तुम मुझे सुनाना चाहते हो वो तुम मेरे कुत्ते को सुनाओ, अगर मेरे कुत्ते को कहानी पसंद आ जाएगी तो मुझे भी आ जाएगी, और अगर मेरे कुत्ते को कहानी पसंद नहीं आई तो मुझे भी नहीं आएगी। और वो सच में हुआ, लाइक डायरेक्टर ने पूरी की पूरी कहानी जो है वो कुत्ते को सुनाई। ऑफकोर्स उन्हें पसंद नहीं आई क्योंकि अपेरेंटली कुत्ते को पसंद नहीं आया। अब आप लोग बोलोगे कि कुत्ते को कैसे कहानी पसंद आ सकती थी, क्या ही वियर्ड रीजन था ये? वेल ऑफकोर्स It was according to him, it was a logic. और अपने ये स्वैग में वो मना कर दिया उन्होंने इस फिल्म के लिए। अब इसकी वजह से यही रीजन था कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों को ना कर दी थी, नहीं तो शायद उनका रुतबा और भी ज्यादा खतरनाक होता। पर मतलब अगर हम सोचें इस बारे में तो सच में, मतलब आप कितने भी टैलेंटेड हो बट आपको किसी को नीचा तो नहीं दिखाना चाहिए। स्वैग इज वन थिंग बट एटीट्यूड, एरोगेंस, वो भी टू दिस लेवल, दैट्स नॉट एक्सेप्टेड।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ रफी साहब कितने अच्छे शख्स थे। मतलब उनकी शख्सियत की हम जितनी बड़ाई करें, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसका एक और किस्सा सामने आया है और ये किस्सा ऋषि कपूर ने खुद बयां किया था। ऋषि कपूर कहते हैं कि रफी साहब इतने खूबसूरत इंसान थे, इतने खूबसूरत शख्सियत थे कि मतलब आप उनको कुछ भी कह के बुरा फील नहीं करवा सकते और वो आपको कभी भी बुरा फील नहीं करवाएंगे। अगर आपसे गलती भी हो जाएगी तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमेशा माफ करने वाले इंसानों में से थे। ऋषि कपूर कहते हैं कि लैला मजनू की शूटिंग चल रही थी और लैला मजनू में रफी साहब के बहुत सारे गाने थे। जी हाँ, और उसी में से एक गाने की रिकॉर्डिंग जो है वो होनी थी और उसके लिए ऋषि कपूर जो है वो स्टूडियो पहुंचने वाले थे, लेकिन स्टूडियो पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई क्योंकि वो शूटिंग में ही जो है उन्हें देर हो गई, शूट पे देर हो गई। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रफी साहब वहां पर बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर ऋषि कपूर पहुंचे, उन्होंने रफी साहब को कहा कि रफी साहब आप इतने बड़े फनकार हैं और मैंने आपको यहां पर इंतजार करवाया, मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे देरी हो गई इसलिए मैं माफी चाहता हूं। तो रफी साहब सामने से कहते हैं कि बेटा तुम पर्दे पर मेरी आवाज बनते हो तो इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं, मतलब इतना तो मैं कर ही सकता हूं। तुम कितनी बार पर्दे पर मेरी आवाज को पहुंचाते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। जी हाँ, एंड ऋषि कपूर की आंखों में आंसू आ गए ये सुन के कि क्या मतलब अब कोई इतना बड़ा फनकार, जो कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, जिसकी आवाज बनने के लिए जो है वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो लाइनों में लगे रहते हैं, वो ऐसे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और बुरा भी नहीं मान रहे हैं। मतलब कोई और होता आप तो शायद बुरा मान जाता, एरोगेंस दिखा लेता, लेकिन रफी साहब उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने इतना प्यारी चीज कह दी कि ऋषि कपूर की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल यानी कि ट्यूसडे को। आपको क्या करना है? वेल, मजे करने हैं, फन करना है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है और काइंड बनना है। किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हो तो जरूर करनी है, बिकॉज इट फील्स गुड, आई एम टेलिंग यू। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीम सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651 ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए भक्ति राज रामायण मंडली एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Taua Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachchon ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701 651.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले ब्रिस्बेन में सितंबर की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जी हां, रुख करते हैं मौसम की तरफ और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जहां की हम हैं वहां मौसम के मिजाज थोड़े बदले हुए हैं। ब्रिस्बेन में सितंबर की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है जिससे तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है। वहीं कारों की चोरी रोकने के लिए टोयोटा का नया कदम। जी हां, क्वींसलैंड में गाड़ियों की चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय लैंड क्रूजर और प्राडो गाड़ियों में एडवांस एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजर सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। वहीं ओवर स्पीडिंग में 2 मिनट के अंदर 2 बार कटा चलान। क्वींसलैंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक कार ड्राइवर को तेज रफ्तार के कारण महज 2 मिनट के भीतर 2 अलग अलग पुलिस गाड़ियों ने रोककर चलान थमा दिया। अब ड्राइवर का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गया है। वहीं वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल स्पेस की भारी किल्लत। जी हां, प्रॉपर्टी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ब्रिस्बेन में स्टोरेज और इंडस्ट्रियल जगहों की भारी कमी हो गई है। कमर्शियल स्पेस की मांग इतनी बढ़ गई है कि कई जगहों पर हाउसफुल के बोर्ड लगाने की नौबत आ गई है। वहीं बुजुर्गों के लिए ई बाइक्स को लेकर नया नियम। क्वींसलैंड सरकार ने बुजुर्गों के लिए ई बाइक्स के इस्तेमाल पर नए सुरक्षा नियम लागू करने पर विचार किया है ताकि सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं स्प्रिंग आते ही अस्थमा और एलर्जी की चेतावनी। जी हां, ब्रिस्बेन में स्प्रिंग सीजन की शुरुआत के साथ ही डॉक्टर्स की संस्था RACP CGP ने अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को सतर्क रहने और अपना हेल्थ प्लान अपडेट रखने की सलाह दी है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबर की तरफ। सबसे पहले दिल्ली इमारत हादसा और रेस्क्यू। खबर दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके से है जहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं भारत का नक्शा और यूएन में स्टैंड। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रस्तावित वर्ल्ड मैप पर भारत का रुख एकदम साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के ऑफिशियल मैप के हिसाब से ही दिखाया जाना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोड मैप। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 साल का एक बड़ा मास्टर प्लान पेश किया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2029 तक देश से ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। वहीं हैदराबाद में TCS का 70,000 करोड़ का निवेश। बिजनेस वर्ल्ड से बड़ी खबर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की कंपनी हाइपर वॉल्ट हैदराबाद में करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। यहां 1 GW क्षमता वाला विशाल AI डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा। इसके साथ नीट PG की आंसर की पहली बार होगी जारी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर। NBEMS इस बार पहली बार नीट PG 2026 की प्रोविजनल आंसर की सार्वजनिक रूप से जारी करने जा रहा है। वहीं दिवाली के लिए ट्रेनों की एडवांस बुकिंग शुरू। त्योहारों का मौसम करीब है और भारतीय रेलवे ने दिवाली 2026 के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, फ्लाइट्स रद्द। इंडोनेशिया के प्रसिद्ध अनाक क्राकटोआ ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है। हवा में छाए राख के बादलों की वजह से जकार्ता एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं बाल विवाह के खिलाफ यूएन में भारत की पहल। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत की पहल पर यूएन जनरल असेंबली ने 27 नवंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं रूस का दावा, नाइजर में तख्तापलट की साजिश नाकाम। अफ्रीकी देश नाइजर ने से बड़ी राजनीतिक खबर है। रूस की मदद से नाइजर सरकार ने अपने देश में तख्ता पलट की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। वहीं जर्मनी ने स्पेस में लॉन्च किया अपना रॉकेट। यूरोप ने अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जर्मनी ने सफलता के साथ अपना कमर्शियल रॉकेट स्पेस में भेजा है। वहीं नेपाल चलन में फंसा चीनी वर्कर 10 दिन बाद सुरक्षित निकला। नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के दौरान टनल में फंसे एक चीनी नागरिक को 10 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसी के साथ नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट की तैयारियां तेज। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता चाइना मास्टर्स। बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हमारी स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में चीन की टीम को हराकर अपना पहला चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ 17 साल के नील सम्राज ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। लुधियाना में चल रही नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 साल के नील सम्राज ने इतिहास रच दिया। वहीं महिला T20 एशिया कप में भारत की शानदार जीत। महिला क्रिकेट में भारत का जलवा कायम है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच गवाए अपना दबदबा बनाए रखा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं Radio Biswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब

स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वृद्धवीन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: जवानी दीवानी थोड़ी आग है थोड़ा सा पानी।
1: बिच्छू बिच्छू ओ बिच्छू ये बिच्छू मुझे साथ खाएगा।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सर वन एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसी पाने हुए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नू नवा लुक देण दे लई वेट लूज कीता, पर जरूरत तो ज्यादा पतला हो जाण दी वजह नाल कईआं नू तां तारीफां तो ज्यादा ना ट्रोलिंग दा सामना करना पिया सी। उन्हां बारे ही मैं सोचा कि क्यों ना गल करा, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा क्रेज वध चुकिया है लोगों के विच पतले होण दा। हर कोई चाहता है कि मैं पतला होवां, बहुत पतला होवां। बहुत पतला होण दे चक्कर दे विच कई कई स्केलटन हो जाते ने, कई वधिया लगते ने, पर कईआं नूं मतलब ट्रोलिंग दा शिकार होना पैंदा है। तो मैं अज उन्हां ही एक्टर्स बारे दसूंगी जो ज्यादा पतले हो गए सी, उन्हां नूं ट्रोल किया गया सी उन्हां दे उही पतली लुक करके।

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आप बने हुए हो। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दिया तस्वीर ते वीडियो ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदों अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुख गए ता कंपैरिजन वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ते छा के कि पहला की सी ते हुण की बन गए हैगे ने। ता उस तो बाद उन्हां नूं काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। जिम मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैगे ने ता उसी तरह दे नाल सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं हैगे जिन्हां ने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्हां ने चली हैगी है बहुत सारे हैगे ने। उन्हां बारे दस्सदे आं तुहानूं एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हुई।
4: क्या?
3: मॉडल नहीं आ रही।
4: क्यों
3: सर? आपकी मोबाइल पर फोन आया था कि वो नहीं आएगी।
4: ला फोन दे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: जी वेलकम बैक, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम है गए वह है राम कपूर दा। टीवी दी दुनिया विच कामयाबी दे झंडे गड्डण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मां विच भी खूब नाम कमाया है। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय दे दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखिया। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जदों उन्हां नूं वजन घटाया तां उन्हां दा वजन तां घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखण लग पिया। लोग उन्हां नूं इस नवें लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Mummy, Papa ki tabiyat ki bahut tension rehti hai yaar. Hum yahan Brisbane mein aur wo India mein akele hain.
6: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
7: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश बने हुए। अगला नाम है जी करण जौहर का। बॉलीवुड की दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दित्तियां बल्कि हिंदी सिनेमा नू कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नू असी शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है, पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स से मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैन का आरोप लग गया। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: मेनू सारा कुछ मिलिया सुहाना।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हां जी रेगो, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जीआरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। तो बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नु भी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह है कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजिशन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मों के लिए घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर जद वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस के लिए ट्रोलिंग चल चुके हैं।

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: House. मैं तुहानू कहा ना कि जरूर जरूर जरूर जुड़ो साडे नाल, तां जुड़ो साडे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जिते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाओ साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहो। साडा मकसद हैगा तुहाडे नाल जुड़न दा। तां जिवें तुहानू पहलां कहा ना कि दसो कि किहड़े एक्टर नूं ट्रोलिंग दा शिकार नहीं होना चाहीदा सी, कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वधिया सी, ते किहड़ी एक्ट्रेस तुहानू लगता है कि उसनूं स्लिम होण दी लोड़ नहीं, बल्कि ही ज्यादा वधिया लगदी सी। जरूर दसो, जुड़दे रहो साडे नाल। ते मैं तां इही वादा करके चली आं जी कि कल करदे मुलाकात। रुख अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash your boy. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing.
0: पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं
2: ब्रिस्बेन क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए म्यूजिक डिवोशन पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस फ्राइडे 30th October 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शैंडलर सबसे खास बात ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं एक मीनिंगफुल कॉज भी है ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट निखार जुनेजा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009 प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स कम फॉर द म्यूजिक स्टे फॉर द पर्पस लीव इंस्पायर्ड
4: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता कल को इमरजेंसी हो जाए तो
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं
4: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड
5: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360 ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशन. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी, सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स and accessories, top quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, gift wear bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीम सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 एफएम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलट कर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

नमक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन के आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन नमस्ते यदाब सत श्री अकाल सुबह की फ्रेश हवा एक प्यारी सी मुस्कान और ब्रिस्बेनी की आवाज के साथ आपका दिन जो है ऑफिशियली शुरू हो चुका है दोस्तों मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आज का हमारा मॉर्निंग रूल है जो हो गया उसे जाने दो जो आने वाला है उसे खूबसूरत बनाओ तो चाहे दोस्तों आप काम के लिए निकल रहे हो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहे हो या फिर बस अपनी पहली कॉफी एंजॉय कर रहे हो वॉल्यूम हमेशा की तरह थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि आज की सुबह है सिर्फ और सिर्फ आपके नाम आइए इस नाम को हम जोड़ देते हैं इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिस्बानी में आप सभी का। तो दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए ब्रिस्बन एंड क्वींसलैंड की न्यूज अपडेट को जानेंगे। सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट लोकल अपडेट की बात करेंगे। साउथ ऑफ ब्रिस्बन स्टॉकले में एक लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और इमरजेंसी क्रूज ने मौके पर पहुंचकर लगी ग्रास फायर को कंट्रोल किया है। आपको बता दें कि अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्वींसलैंड में बुश फायर्स भी इस समय कंसर्न बने हुए हैं। कई एरियाज में फायर्स के कारण जो है वो डिस्ट्रप्शन हुआ है और ब्रिस्बन तक स्मोक का असर देखने को मिला है। इसीलिए अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए निकल रहे हैं तो लोकल अलर्ट्स पर नजर जरूर रखें। और ब्रिस्बन सिटी में आज रात से क्रीक स्ट्रीट पर 8 PM से 5 AM तक ट्रैफिक चेंजेस रहेंगे। मोबाइल क्रेन एक्टिविटी के कारण अगर आपका रूट जो है उस तरफ है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेवल टाइम लेकर जरूर चलिएगा। जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी अपडेट्स। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बानी में।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत। तो आइए इसी के साथ ब्रिस्बेन वेदर वाइब जो है वो जानते हैं। सितंबर यानी कि ब्रिस्बेन में स्प्रिंग का सीजन और टेम्परेचर्स धीरे धीरे वार्मर हो रहे हैं। आज के फोरकास्ट में पार्टली क्लाउडी कंडीशंस और हल्की सी शावर जो है उसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो भाई अम्ब्रेला को पूरी तरह से रिटायर मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, मौसम बदल भी सकता है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद एंटरटेनमेंट बस आखिर क्या कुछ चल रहा है, गॉसिपिंग में कौन शामिल है। आप बस इसे सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सभी जानने का सफर।

वेलकम है जी एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। अब थोड़ा सा मूड करते हैं ग्लैमरस की ओर। काइली मिनोग एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के बिगेस्ट स्पोर्टिंग स्टेज पर धमाल मचाने वाली हैं। उन्हें एएफएल ग्रैंड फाइनल के प्री गेम शो में परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस को बेहद ही बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है। और टीवी लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट है ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवर। बात करें राइवल्स की तो उसका नया सीजन आने वाला है जिसमें कि कई जाने पहचाने स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज भी नजर आएगी। जाने की थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी बातें, आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद थोड़ी सी हम विचारों की भी बात करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा की तरह आप सभी से कहती हूँ कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट जरूर होता है, बस उसे जांचने की देरी होती है और जरूरत होती है। आज बस इतना कीजिए, किसी भी एक छोटी सी चीज के लिए थैंकफुल जरूर रहिएगा दोस्तों। हमेशा आप कॉफी के साथ स्माइल जरूर रखिए और अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस जरूर दीजिए, टाइम वक्त जरूर दीजिए, क्योंकि ये जो मेमोरीज होती है वो हमेशा के लिए हमारे लिए एक स्पॉट की तरह काम करती है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है और हम किसी भी काम के लिए खुद को अकेला फील नहीं करते हैं। जब फैमिली का सपोर्ट होता है, प्यार होता है, तो हम हमेशा ही हर काम में सक्सेसफुल जरूर होते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

दोस्तों कहते हैं ना, हमेशा हमें जिंदगी में एक ना एक जरूर शिकायत होती है कि कोई भी हमें समझता नहीं है। हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, हमारे साथ हमेशा धोखा होता है क्योंकि कोई हमें समझना ही चाहता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आप खुद को समझते हैं, अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ब्रिस्बेन कॉफी रेडी, मूड रेडी, स्माइल रेडी, देन लेट्स मेक दिस ट्यूजडे अ ब्यूटीफुल वन विद दिस सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी चैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ी सी काइंडनेस जरूर रखिए। और हाँ, आज अगर कोई भी आपको परेशान करे ना, बस मुस्कुरा कर कहना सॉरी डार्लिंग, आई एम हैविंग अ ब्रिस्वानी काइंड ऑफ मॉर्निंग। जी हाँ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और जुड़े रहिए ब्रिस्वानी के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन। आप सभी सुन रहे थे जानी का सफर प्रोग्राम। आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज कह रही हूँ कुछ दिनों से ना थोड़े से हेल्थ साथ नहीं दे रही है, काफी वायरल हो चुका है। सो फिर भी कोशिश की है कि प्रोग्राम जो है उसके अपना हो। कुछ गलती होगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और आप इंजॉय कीजिए रेडियो ब्रिस्वानी के और भी कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

हैं रिजू प्रस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी सरकार बना सकती है फॉर राइट पार्टी, 44% मिले वोट। जर्मनी के पूर्वी राज्य सैक्सोनी एनहाल्ट में हुए हालिया क्षेत्रीय चुनावों में फॉर राइट पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने 44% से अधिक वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी राज्य स्तर पर फॉर राइट पार्टी के सत्ता में आने की संभावना पैदा करता है। पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार उल्रिच सिगमंड ने इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। इसे बर्लिन की संघीय सरकार के लिए एक कड़ा संदेश बताया है। इंटरनेशनल एयर शो में भाग लेने मिस्र पहुंची वायुसेना की सारंग टीम, दुनिया देखेगी सामर्थ्य। भारतीय वायुसेना की फेमस सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए मिस्र पहुंच गई है। ये टीम 8 से 10 सितंबर तक होने वाले एयर शो में अपना कर्तव्य दिखाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये प्रदर्शन पायलटों के कौशल के साथ भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस सामर्थ्य को दर्शाएगा। इसमें सारंग टीम अपना प्रसिद्ध डॉल्फिन लीप और नया स्पॉट स्टॉल टर्न जैसे हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाएगी। इस इंटरनेशनल एयर शो में वैश्विक वायु सेनाएं और विशेषज्ञ जुटेंगे। सदियों तक खिंच सकता है रूस के साथ युद्ध, कीव में अमेरिकी दूतों से मुलाकात के बाद बोले जेलेंस्की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कीव दौरे पर आए अमेरिकी दूतों के साथ वार्ता में कहा कि रूस के साथ युद्ध फिलहाल सदियों तक जारी रहने की संभावना है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेलेंस्की दोनों ने इस बातचीत को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन किसी ने भी रूस के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर किसी बड़ी सफलता की घोषणा नहीं की। आइए जुड़ते हैं अब भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। 40 सालों में बदली भारत की रफ्तार, अब अमेरिका को पिछाड़ने की तैयारी में। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क पिछले एक दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जल्द ही भारत इस मामले में अमेरिका को पछाड़ कर चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। इंदौर में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये उम्मीद जताई है। डिफेंस सेक्टर में बड़ा कदम, 1.10 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन मंजूरियों ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतें शामिल की हैं। खबर है कि लगभग 98% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की जाएगी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: या यू प्रोमिस इज कमिंग अप नेक्स्ट, बट मुझे लग रहा है कि भगवान आज मुझसे थोड़ा रूठे हुए हैं।
1: क्यों?
0: सुबह से फोन लॉक कर दिया, इधर मेरे कंप्यूटर ब्लॉक कर दिया है, अब मैं क्या करूं? करूं तो क्या?
1: हाय, मैं क्या करूं? अगेन आई डोंट नो व्हाट टू डू।
0: चलो चलो, पहले हम हवन करेंगे, हवन करेंगे।
1: Maybe that's right.
0: लो, मेरा फोन इज रिंगिंग, आई एम क्लोजिंग। Now that proves the fact that there is definitely there is Lord up there.
1: Of course.
0: Yeah. But he's not cooperating with me today. आज भगवान मेरे ऊपर कुछ रूठा हुआ है, रूठे हुए हैं। Okay, can you play something while well maybe I'll do another prayer or something.

0: Nino, thank you very much. बहुत अच्छा लगा. If I was going to play a ghazal or something, I would have probably picked that one.
1: Just because Nilu picked it, now you're saying you would
0: because
1: have picked
0: Nilu's
1: that one.
0: Because Nilu's choice, I love too, you know. She's got a... One day I'm going to sneak in and see where Nilu gets all these songs from. Her choices are really...
1: Yeah.
0: Yeah. I don't say that. I mean, not only me, a lot of people say
1: yes,
0: that.
1: Yes. Yeah.
0: एनीवे दोस्तों आप फ्राइडे को नीलम को सुन सकेंगे और आप फिर बताइए हमें कि क्या मैंने सही कहा या नहीं. द प्रेशर इज ऑन नील. ओके ऑलराइट व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट. व्हाट यू प्लेइंग नेक्स्ट? यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट टू प्ले?
1: नो आई वाज थिंकिंग ओके वी सेड वी मिक्सिंग एवरीथिंग अप. ओके
0: या

0: देखिए दोस्तों, दयालुता की कीमत, सफलता सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से भी कि हमने कितने लोगों के जीवन को अपनी अच्छाई से छुआ। ठीक है,
1: That's true, right?
0: Yeah, तो इस बात को याद रखें दोस्तों। और एक बात और याद रखें कि खुश रहने के लिए किसी परफेक्ट दिन को इंतजार मत कीजिए। आज मुस्कुराने की एक छोटी सी वजह ढूंढिए और उसी से अपना जो अपने दिन का जो खूबसूरत दिल को खूबसूरत बना दीजिए। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा कोई ऐसा एक एक्सक्यूज ढूंढे जो आपको अच्छा लगे और आपका दिन अच्छा हो जाए। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो बहुत बड़े काम कर जाते हैं। ठीक है, ओके। एक गाना मुझे याद आ गया था कि चलो मस्जिद चले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाए, और समथिंग लाइक दैट।
1: You want to find it?
0: It's a beautiful, beautiful. I think Rafi Saab sang it.
1: Do you want to find that song?
0: I'll find it later after. Can I play this song?
1: Yeah, yeah.
0: Then I'll come back and find it, okay? Ready, Biswani, aap sun rahe hain dosto.

Alrighty, hopefully आपको ये रिटन वर्जन अच्छा लगा होगा दोस्तों. और विशाल थैंक यू वेरी मच, आपने भी कॉल किया. यू आर कमिंग टू माय रेस्क्यू, बट आई फाउंड द सॉन्ग, बहुत बहुत अच्छा लगा. चलो समय नहीं जाया करेंगे और इसको हम सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों. शायद आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म तमन्ना का गीत है, सोनू निगम ने गाया है.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Centre, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: ओके, वी आर बैक और चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। ओके, व्हाट आर यू प्लेइंग नेक्स्ट?
6: Oh, play something
5: new,
6: slightly newer.
5: Okay.
6: Okay.
5: Yes, please.
6: Right, here we go.
7: Hi, this is Anushka Sharma, and you are listening to Radio Brismani.

0: 1
1: बलेती पी गए बा देसी अभी बाकी है
0: मस्ती में द बेस्ट और हंगामा में सबसे

0: मिजबानी।
1: जी हाँ दोस्तों, रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज है मंगलवार, और आज मंगलवार है ना
2: जी।
1: ओके,
2: लुक हाउ द टाइम इज गोइंग, माय गुडनेस।
1: ओके जी हाँ दोस्तों, टाइम इज फ्लाइंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और अगर आप भी कुछ सुनना चाहे तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज और कॉल अस। क्या नंबर है?
2: 3279-1701 or 0433-1701.
1: Wow, what a smart lady. You remember the numbers. Woo.
2: It's very easy.
1: Easy 1701, yeah, isn't it? Yeah, yeah. Easy ka matlab hai 3279. Okay, you're playing something.
2: Go ahead. Of course I am.
1: Okay.

0: से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
3: या
2: या,
3: या।
2: ओके सॉफ्ट
3: या सॉफ्ट
2: या
3: अब लाउड या
4: Have I made your day?
5: You made your day have now made for the whole my day, be happy. Day. Actually, you've made my entire month.
4: Yeah, because you were waiting for the breaker.
5: Thank you. Thank you. Thank you.
4: You're most welcome. Okay. Oops.
5: Yep.
4: What's happening? कहते हैं ना दोस्तों चलो आज के विचार में कह दूं ठीक है
5: ओके
4: खुश रहने के लिए किसी परफेक्ट दिन का इंतजार मत कीजिए आई कीप रिपीटिंग दिस सो दैट इट रियली यू नो आज मुस्कुराने की एक छोटी सी वजह ढूंढिए और उससे से अपना जो अपने दिन को खूबसूरत बना दीजिए अभी मैंने पढ़ा था ये और कहते कि हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल से थोड़ा ज्यादा समझदार थोड़ा ज्यादा दयालु और थोड़ा बेहतर इंसान बनने का हर दिन हमको मौका मिलता है उसको आप गंवाए मत दोस्तों है कि नहीं
5: या एब्सोल्युटली
4: या
5: यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिंगल डे
4: यप ठीक है ऑलराइट चलो
5: सो
4: सुना दो
5: लीजिए

0: Your eyes feel uncomfortable and your vision temporarily blurry. Maybe that's what I've got. Okay? What happens when you watch for too long? You blink less while concentrating on a screen, so your eyes can become dry, irritated, or watery. You may also experience headaches, tired eyes, and difficulty focusing. These symptoms generally improve with rest, although existing dry eye problem can be aggravated. Okay, देखिए दोस्तों, जब अगर आपका आई में इससे लग रहा है कि एकदम अब्रेसिव हो, जैसे कैसे मैं बताऊं, अब्रेसिव हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे कि ओ माय गॉड, व्हाट वुड यू कॉल अब्रेसिव, जैसे कि जैसे अगर डस्ट हल गया हो आपके आंख में ना, ठीक है, आप रब करते हो, कभी काल क्या होता है, बिना कुछ अंदर जाने से भी आप ऐसे रब करोगे, सोचेंगे डस्ट हल गया, वो दैट्स अ साइन ऑफ ड्राई आईज,
1: ड्राई आईज,
0: आपका आईज ड्राई है, तो और ड्राई जब आईज होने लगता है दोस्तों, आपके आंख में से आंसू बहुत निकलेगा. नाउ दिस इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग, इज़न्ट इट? आंसू निकलेगा, लेकिन देन आंसू इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ योर ड्राई आईज, सो द ग्लैंड्स ट्राई टू रिलीज दिस. देखो दोस्तों, मैं वो कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आपको मैं पैसा बचाने के सोच रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने पैसा भर कर दिखा कर आया हूं, और यही मुझे यह भी बताया गया, ठीक है. सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, आई विल सेंड यू अ बिल. तो गेटिंग बैक टू इट, अपने आंख को रब मत करें दोस्तों, और कभी क्या क्या होगा कि आप अनजान में से आंख में से आंसू टपकेगा, ठीक है. सो दैट इज योर ड्राई आईज. सो मिलता है आपको केबिस पर जाकर, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स फॉर ड्राई आईज, वो लेक आई थिंक आर्टिफिशियल टीयर्स इज अ ब्रांड नेम, कुड बी, बट फॉर योर ड्राई आईज, ठीक है. आई डोंट हैव माइन हियर.
1: देयर इज आल्सो अ थिंग कॉल्ड रिफ्रेश, which is more like a saline solution.
0: Yeah, but I don't know if that's for dry eyes. Dry eyes.
1: Yeah, it is.
0: You sure?
1: Yes.
0: Because what it does is it puts a coating on your eyeballs.
1: Oh.
0: Okay. The other one might be just refreshing it.
1: Maybe just for tired eyes.
0: Yeah, okay. Yeah, right. But this one there, it stays there.
1: Specifically.
0: So you have to apply.
1: Oh.
0: Three times a day, aapko chhodna padega drops for life.
1: Oh.
0: और ये आपको बहुत मदद करेगा, आपका आंख में जो पानी टपकता है वो बंद हो जाएगा, आपको आपका आंख इरिटेट नहीं होगा, जैसे कि कुछ है वहां पर, जैसे कोई कुछ स्टक है आपके आंख में, ठीक है. दैट इज ऑल बिकॉज इट इज एब्रेसिव, इट इज वेरी ड्राई. तो अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है दोस्तों, जस्ट गो एंड गेट सम आर्टिफिशियल टीयर्स, उसमें लिखा होगा फॉर ड्राई आईज, एनीथिंग फॉर ड्राई आईज, ठीक है. और एक दो दिन में आप नोटिस करेंगे कि ये काफी ठीक होने लगा है, ठीक है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं.
1: Well, seeing that you are talking about eyes,
0: I was just going to say that.
1: What?

0: I still can't describe what you say about rough eyes. जब आँख आपका जो आँख में जैसे itching kind या abrasive. What do you call abrasive? जैसे कि rough, जैसे sandpaper की तरह आपका eyes में हो रहा हो. ठीक है, इसे आई मीन आई एम एग्जेजरेटिंग बट समथिंग लाइक दैट. व्हेन यू समटाइम्स अपने आईलिड को ऊपर भी करना चाहते हो सो दैट इट विल कम आउट, जब पलक है जो आपका उसको भी आप उल्टा करते हो,
1: यू नो लाइक आईलैश गेट्स इन
0: या या
1: सो समथिंग देयर,
0: बट इट्स नॉट समथिंग देयर, समटाइम्स
1: देयर. नो नो, आई नो व्हाट यू सेइंग, बट मोस्टली
0: देयर, इट विल फील लाइक दैट. तो आप एक कोशिश करिए दोस्तों, यूज करिए और देन यू सी व्हाट हैपेंस. ओके, मे बी इट कुड बी समथिंग एल्स, बट मोस्ट लाइकली it will be dry eyes. Okay.

0: खैर टाइम किधर गया, बहुत जोर टाइम गया। खैर चलो दोस्तों, आप रेडियो भिजवानी सुनते रहे, क्योंकि आपको बतला दूं इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ आप हैं, फिर आप हो जाएंगे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, और क्या फिर
1: निविया के साथ।
0: निविया के साथ ठीक है, तो कार्यक्रम सुनते रहे। और वंस अगेन वेलकम एवरीवन, अभी बहुत से लोग ज्वाइन किए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं बहुत दूर दूर से ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ विशाल, आई एम सो सॉरी विशाल, आई प्ले योर सॉन्ग टुमारो, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने बहुत देर में देखा। जी हाँ, तो
1: यू कैन, आई प्ले वन, इट्स 8:48,
0: ओके,
1: लेट मी प्ले वन सॉन्ग व्हाइल यू फाइंड दैट,
0: ओके, ऑलराइट,
1: ओके, आई प्ले वन सॉन्ग व्हाइल यू फाइंड इट।

ओके चलो विशाल आपका गाना मिल गया है और वील प्ले दैट फॉर यू. होपफुली यू आर स्टिल लिसनिंग. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान.

0: वो ब्यूटीफुल है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत अच्छा लगा विशाल. थैंक यू फॉर द लवली सॉन्ग. और हम अब पहुंच गए हैं जबकि हम आखिरी गीत आपके लिए पेश करेंगे. ठीक है. और आप सभी ने साथ दिया. थैंक यू सो मच. कल मिलेंगे. अगर ऊपर वाला बैठ कर तकदीर में लिखा है कि हम कल मिलेंगे तो फिर हम मिलेंगे. ठीक है
1: जी. ओके. ऑलराइट. नमस्ते एवरीवन. टेक केयर. हैव अ ब्यूटीफुल डे.

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अलार्म नहीं है भाई सुबह का, ये तो सताक्षी की गुड मॉर्निंग है आपसे और खासकर उनसे जिनको अभी भी गुड मॉर्निंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। देखिए उठ जाइए, सुबह जो है वो ढेर सारे एहसास तो आपके लिए लेकर आती ही है, लेकिन एक चीज और है जो खास आपके लिए हर रोज नई सुबह लेकर आती है, आपकी जिंदगी में एक नया दिन और आपके लिए एक नया मौका उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिन्हें आप बेसब्री से पूरा करना चाहते थे कल रात को। बस यही सोच रहे थे कि एक दिन और मिल जाता तो बस हम कर ही डालते इसे पूरा। तो चलिए आज फटाफट से उठ जाइए और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज जो ये दिन आपको मिला है इसे जाया मत करिए, इसे वेस्ट मत कीजिए और इसको खूबसूरत बनाइए अपने नए एहसासों और मोहब्बत के साथ। मैं हूँ सताक्षी दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर आज एक बार फिर से, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने, ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स जो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलके आज के इस जर्नी की, इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम पर सताक्षी के साथ। आगे बढ़ूं उसके पहले जो खास दिन जिनका आज है उनको हम विश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो ब्रिस्बेन विश करता है उन्हें, जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और आपकी जो जिंदगी है महकती रहे, खुशियों से चहकती रहे, और आप हर दिन इस जिंदगी को खूबसूरती से जीते रहे, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहे और सेल्फ लव की तरफ जरूर बढ़ते रहे, क्योंकि खुद से मोहब्बत बाबू मशाय बहुत जरूरी है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्हें मोहब्बत खुद से नहीं किसी और से हो रखी है, तो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चाहे वेडिंग एनिवर्सरी आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लव मैरिज हुई थी या फिर आपकी हुई थी अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज तो मैरिज है और मैरिज के बाद चाहे लव हो या अरेंज हो बीवी बीवी होती है। और आप ना भी चाहे तो भी वो आपको बता देंगी कि भाई आज कुछ स्पेशल करना है, तो उनको बताने का मौका मत दीजिए और आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बनाइए और आज एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि जो रोज की जद्दोजहद है, स्ट्रगल्स है, उनके चलते आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, आज वो वक्त आप जरूर दें। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
3: सुपर सुपर फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा।
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
3: हिल मत चिल।
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा। या ओके
3: सॉफ्ट लाउड। या
5: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
6: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ।
6: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस में सकाक्षी के साथ हम सुन रहे हैं बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग ट्रैक्स। वैसे इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको थामनी है वो है आपकी फैमिली। मजबूती से पकड़ के रखिए इसे। आपको पता है दुनिया ना आपको थामने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढी देगी। वो डेडलाइन, वो जरूरी काम, वो लोगों का मिलना, वो असाइनमेंट्स, वो सब कुछ। बट यू नो बाहरी दुनिया में लोगों को आपकी जरूरत है आपके काम की वजह से, लेकिन जो अंदर की दुनिया है ना, आपकी फैमिली, आपका परिवार, इनको आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके होने से ये पूरे होते हैं। आपके होने से इनको वजूद मिलता है। आपके होने से उस घर की फैमिली पूरी होती है, उस घर की खुशियां पूरी होती हैं। और आपके चले जाने से वहां फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। या आपको कुछ हो गया, आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी, तो भी वहां फर्क पड़ेगा। इसलिए इनको थामिए। फैमिली और अपनेपन से ज्यादा जरूरी लाइफ में और कुछ भी नहीं होता। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.0 FM पर।

हैं कि वक्त में बहुत पावर होती है, बड़े से बड़ा जख्म भर देता है ये वक्त। यू नो, जब भी कोई बात होती है आपकी लाइफ में, आपको रिसेंटली बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोना आता है, बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आप किसी को, लेकिन वक्त के साथ साथ ना वो लेयर थोड़ी सी जमती चली जाती है, वो रोना कम हो जाता है, वो गुस्से का लेवल कम हो जाता है, वो प्यार कम हो जाता है, और वो मिस करना, वो ब्रेकअप का दर्द, वो सब कुछ वक्त जो है वो धीरे धीरे ठीक कर देता है। तो हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि वक्त धीरे धीरे सब सिखा देता है, सुकून भी, सहना भी और मुस्कुराहट भी। इसीलिए कहते हैं कि वक्त से बड़ा बलवान और कोई भी नहीं है। और वक्त की इज्जत कीजिए, वक्त को समझिए और वक्त पे चीजों को छोड़ दीजिए। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। सुनते रहिए सताक्षी को इट हैपेंस में, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

अक्सर लोगों को रिश्ते बनाए रखने के लिए खुद को बदलते या खुद को एक नकाब से ढकते देखा है। कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ बदलने की एक्टिंग करते हैं। ये दोनों ही बातें सरासर गलत है ना। देखिए, एक्टिंग करके आप अपने आप को कब तक छुपा पाएंगे? आप आज इंसान को दिखा सकते हैं कि नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए जैसा तुम्हें चाहिए, लेकिन कुछ वक्त बाद जब आप अपने असली रूप में आएंगे तो रिश्ता भी तो खटास में पड़ेगा ना। और बदल जाना ये भला कहाँ का इंसाफ है। देखिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए, जो ठहर जाए वही तो आपका है, और जो आगे जाना चाहे फिर वो तो वैसे भी जाएगा। आप अच्छे बन लें, आप बदल जाएं, या आप बदलने की एक्टिंग कर लें, वो इंसान जो है वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, और जिसे ठहरना है वो आप कैसे भी हों आपके पास ठहर ही जाएगा। सुनते रहिए छापन, सदाक्षी आपके साथ है, रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

सो आज मैं बात करूंगी उनसे जिन्हें तारीफ करना नहीं आता है, खासकर खाने की तारीफ। बहुत आसान है ये कहकर मुंह सिकोड़ लेना कि खाना अच्छा नहीं बना है, या नमक तेज है, या मुझे तो ये नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज तो खाना बुरा नहीं होता है, खाना ये तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। और नमक नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कभी खाने में क्या क्या पड़ता है ये जाना है? आपको रोज एक सही वक्त पर खाना मिल जाता है, थाली सज जाती है, जो आपको खाना है वो सब आपकी प्लेट में होता है। लेकिन उस सजने से बनने तक में, यानी कि बनने से सजने तक में, सॉरी, कितना एफर्ट लगता है, कितना इंसान को मेहनत लगती है, वो कभी सोचा है? वो लोग जो कहते हैं ना कि हमें नहीं खाना, हमें नहीं पसंद, ये नमक तेज है, मिर्ची तेज है, कभी मुझे लगता है अगर वो एक बार खाना बनाने चले जाते हैं ना, हालांकि बनाते ही नहीं है, बनाए तो शायद ये शब्द मुंह से निकले ही ना, और बनाते नहीं है तो उन्हें बहुत आसानी हो जाती है कहने में, लेकिन एक दिन अगर बनाए तो समझ में आता है भाई साहब खड़े रहना पड़ता है इतनी देर, है ना, एक एक चीज को बनाना, तैयार करना, और किसी के लिए प्यार से सर्व करना, और बंदा कह रहे कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा, कितना बुरा लगता है सोचिए। इसलिए कहती हूँ तारीफ करना सीखिए, है ना। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।